कल कल कल कल कल छल छल बहेरे निर्मल धारा कल कल कल कल कल कल छल छल बहेरे निर्मल

कल कल कल कल कल चल चल बहेरे निर्मल धारा, कल कल कल कल कल कल चल चल बहेरे निर्मल धारा।

सप्तशति चण्डिके उत्कीलनम् कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशति चण्डिके

हम उस प्राण रक्षक, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा के तेजस्वी, श्रेष्ठ, अज्ञान नाशक, दिव्य स्वरूप को धारण करें, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित कर